रंग खुशबू फूल महक ना ही देखी कोई सज धज, सूखे पत्ते सी भटक रही है जिंदगी जैसे कोरा कागज।

इश्क में अच्छा नहीं लेता रहे तू मेरा इम्तिहान, कहीं ऐसा ना हो जिस्म से निकल जाए ये जान।

तेरे होते हुए भी आज मेरा प्यार मुझसे जुदा है। मैं क्यों और कैसे मानूं, मैं कैसे कहूं तू खुदा है।

बस यही तो किया था कि हम जरा हौसला मंद हुए, फिर जिंदगी के दरवाजे क्यों हमारे लिए ही बंद हुए।

पैर थकेंगे, आंसू बहेंगे, जिंदगी में किसको मिला आराम है, न सोच सफर अभी कितना है, बस चलते रहना तेरा काम है।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादी लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: हाय मैं हूँ आरजे ज्यूस।
4: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
5: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
6: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चुनार 90.4 FM हर दिल की।

Chinar Beats ve Dhar Chediva only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

मैं हूं आरजे साहिल मुजफ्फर। आजकल हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी है, जिसको हम ड्रग एडिक्शन या ड्रग अब्यूज कहते हैं। जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे यंगस्टर्स की जिंदगी खतरे में है, क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं। ये हम सब की कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ऐसे नौजवानों की प्रॉपर काउंसलिंग करें, उनको गाइड करें और ये समझाएं कि सही क्या है और गलत क्या है, और ड्रग्स के बिना जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और उनके साथ प्यार से बात करके, गले लगाकर,

0: उनको फिर से सही ट्रैक पे लाएं, ताकि वो हमारी सोसाइटी में हमारे साथ एक बार फिर से सर उठा के इज्जत की जिंदगी जिएं। लेट्स डू इट टुगेदर, लेट अस प्रूव इट टुगेदर दैट वी आर responsible citizens of our society. Let us say hi to life and bye to drugs.
1: Hum hai team Radio Chinar 90.4 FM and we care for you.

0: आवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपुरा तक,
0: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
0: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
2: Chinar Beats with RJ Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा। तब
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन
2: धड़कन। वायरल है तभी व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे
3: तभी वायरल ऑन शो व्हाट्सएप रेडियो चुनार

0: to Zeus.
1: Kon ajo.
2: Zeus. Zeus. Zeus.

0: दोस्तों, रेडियो चुनौर की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी को मिलकर तड़का रहे हैं आप और हम। म्यूजिक बज रहा है तारा रम बम बम, मैं हूं सियूस, आप सुन रहे हैं मजदार शो व्हाट्सएप। मजदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में बातचीत जारी है। जैसा कि मैंने कहा, दोपहर के 2:00 बजते हैं और मैं इन द स्टूडियो। बातों के साथ साथ आपका साथ भी चाहिए, तो याद रखिए 8899-04904। जनाब 8899-04904 नंबर, जो आपके दिलों के तार हमारे दिलों से जोड़ता है। तो हर दिल की धड़कन को जोरों से धड़काने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आप व्हाट्सएप कॉल या टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, साथ ही डीएम भी करें। जी हाँ, इंस्टाग्राम पर सर्च करें ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो, डीएम करके भी आप शो में शामिल हो सकते हैं। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव 90.4 FM। जी हाँ ब्रदर, ब्रदर माय ब्रदर, आइए सुनाया जाए आपको आज का वेदर।
1: रेडियो चुनाव, रेडियो रेडियो चुनाव, वेदर अपडेट, वेदर अपडेट।
0: यहाँ आज का मौसम बड़ा ही औसम होने वाला है, क्योंकि कुछ दिनों से चल रहा है कश्मीर में नया ट्रेंड, बादल नहीं झुकते ना ही सूरज होता बेंड। तो मेजबान मेहरबान कदरदान, आज का जो मौसम है वो औसम इसलिए है क्योंकि आज खिली खिली धूप के साथ गरज और बरस भी हो सकती है।
1: रेडियो चिनार वेदर अपडेट।
0: It's 23 degrees Celsius for the day. It's a sunny day, but दोपहर होते होते बादल जो है गरज भी सकते हैं। वैसे कते एनफील्ड वाला साउंड निकला मुंह से, बट क्या है कि बादल गरजना आप समझ गए ना। यस आई नो यू हैव सॉफ्ट कॉर्नर्स फॉर मी। जी हाँ, अभी की बात करें तो यू इंडेक्स मॉडरेट पर, ह्यूमिडिटी 59%, विंड स्पीड 5 किलोमीटर्स पर और विजिबिलिटी 16 किलोमीटर। आज का सनराइज हुआ 5:41 पर, आज का सनसेट होगा 7:17 पर। और दिल की धड़कन रेडियो चुनाव, स्टे हक्ड, धड़का दे रहा।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: bunch of Zeus.
1: Kon aya?
2: Zeus. Zeus. Zeus.
3: JR Dil Ki Dhadkan Radio Channel milkar dhadka rahe hain aap aur hum. मैं हूँ ज़ूस, आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सअप और व्हाट्सअप शो में। आज का टॉपिक क्या है बताने से पहले बता दूं आपको कुछ दोस्तों के नाम जो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे साथ। जैन लिखते हैं, जैन के सर रेडियो चुनार सुन रहा हूँ काफ़ी देर से और कहना चाहता हूँ दैट यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब, थैंक यू सो मच जैन। और लिखते हैं कि सुहानी शाम सुनता हूँ तो मज़ा आ जाता है, उसमें नुसरत साहब की कव्वालियाँ जो है एड होनी चाहिए। जी हाँ, पक्का ज़रूर होगा। एक्चुअली क्या है कि नुसरत साहब जो है दैट्स नॉट लिमिटेड टू सुहानी शाम ओनली, और नुसरत साहब की जो कवाली आया है उनसे रिलेटेड जो रिमिक्स वगैरह है वो हमारे शोज़ में तो आप सुन पाते हैं, दैट्स वाई वी हैव एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम सुहानी शाम। आपने बताया तो हम उस पर भी काम ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए जैन। मैक हमारे साथ जुड़ी हैं, लिखती है मैक सर पहली बार मैसेज कर रही हूँ, शो में शामिल ज़रूर कीजिएगा, शो अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच मैक। और लिखती है रेडियो चुनार सुनती हूँ, फॉलो भी करती हूँ, बस मेरे कमेंट्स पे रिप्लाई कर दिया करें। ज़रूर कोशिश करेंगे कि बहुत सारे जो कमेंट्स हैं अगर उनमें से आपका कमेंट दिखे तो जाहिर सी बात है ज़रूर कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। आप भी जुड़े हमारे साथ, अपनी बात हम तक पहुँचाएं, 8899904904 इज़ द नंबर, 8899904904 چھ نمبر یتھ پہ کال ہوں کر واٹس ایپ یا ہوں کر ٹیکسٹ میسج تو پہ کتھ اس واٹس اپ شو میں آج ہم ان اچیورس کی بات کریں گے، ان بچوں کی بات کریں گے جو کشمیر سے ہے لیکن کشمیر کا نام بھارت کا نام پوری دنیا میں چمکا رہے ہیں۔ جی ہاں، چاہے کوئی بھی جان رہا ہو، دے آر میکنگ اٹ ہیپن، دے آر بینڈنگ اٹ لائک بیکم، اینڈ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سنز آف دا سوائل ٹوڈے۔ وہ بچے جو اتہاس رچ رہے ہیں آج ان کے بارے میں بات ہوگی۔ اگر آپ بھی ان میں سے کسی کو جانتے ہیں یا کسی کا نام لینا چاہتے ہیں سو یو آر موسٹ ویلکم، 8899904904 نمبر، 8899904904 آپ کال کر سکتے ہیں، واٹس ایپ یا کر سکتے ہیں ٹیکسٹ میسج۔ ڈی ایم کرنے کے لیے زیوس دا بیڈ بوائے آف ریڈیو، انسٹاگرام پر ڈی ایم کر کے بھی شو میں شامل آپ ہو سکتے ہیں۔ ریڈیو 90.4 FM ہارڈ اس فریکوینسی آف نارتھ کشمیر سے ہے۔

स्वच्छ भारत अभियान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऐसा इनिशिएटिव जो एक मिशन नहीं बल्कि एक इमोशन है। सफाई और साफ रहना हर एक को पसंद है और हम अपने घरों को साफ रखते रखते अपने माहौल को इतना गंदा कर देते हैं कि फिर हमें खुद ही शर्मिंदगी होती है। म्युनिसिपैलिटीज और सफाई कर्मचारी हर दिन अपने हाथों से हमारी डाली हुई गंदगी को साफ करते हैं ताकि हम एक साफ माहौल में सांस ले सके। कितना अच्छा होता कि अगर हम इन म्युनिसिपैलिटीज और सरकारी इदारों के साथ अपने माहौल को साफ सुथरा रखने में कोऑपरेट करते और इस बात का सबूत देते दैट वी आर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ आवर सोसाइटी। तो आइए स्वच्छ भारत मिशन में हम अपना योगदान देकर इस मिशन को कामयाब बनाए, क्योंकि स्वच्छता ही सेवा है। हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा,
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: दोस्तों, रेडियो चला 90.4 FM हर दिल की धड़कन आप एंजॉय कर रहे हैं मजेदार शो व्हाट्सएप और व्हाट्सएप शो में अगली पेशकश टिकटॉक्स और बॉलीवुड न्यूज़। जी हां, टिकटॉक्स और बॉलीवुड न्यूज़ आप तक पहुंचाई जाएगी। जरा सा इंतजार, देते रहें प्यार, हर दिल की धड़कन को धड़काते रहो मेरे यार। और इस फ्रीक्वेंसी रेडियो चला 90.4 FM से धड़काते रहो।
1: मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चना 90.4 FM।

0: पानी। पानी एक ऐसी नामत है जिसके बगैर हम अपनी जिंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकते। दुनिया का सिर्फ 3% पानी ही पीने के लायक है, और इसके बावजूद भी क्या हम पानी का सही इस्तेमाल करते हैं? कुदरती आबी वसाइल हम सब के लिए बहुत बड़ी देन है, और इनको आलूदा होने से बचाना और फ्यूचर जनरेशंस के लिए ये दौलत महफूज रखना हमारा फर्ज है। पानी बचाना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि एक नेसेसिटी है। पानी का सही इस्तेमाल करना, बारिश का पानी जमा करना और बाकी लोगों को पानी की बचत करने के लिए एनकरेज करना वक्त की अहम जरूरत है। आइए हम पानी का सही इस्तेमाल करके अपने आने वाले कल को महफूज बनाएं, क्योंकि जल ही कल है, और कल के लिए सिर्फ प्यास नहीं पानी भी रखिए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, जल्ले
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन धड़कन धड़कन।

0: Zeus. कौन आया?
1: So my dear fam, it's my time to sign up for the day. जी हाँ, bye bye Zeus and I'll see you on Monday. अपना weekend अच्छी तरह से आप enjoy करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें. और if you have a good time gap, spend it with your family. Take them out, make their weekends better and yours as well. So, मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन कुछ ही देर बाद आपसे और जुड़ने वाली है RJ दीपा. जी हाँ, चिनार बीट शो का नाम रहेगा बीट्स ऑन रिपीट. यू विल बी हेयरिंग इट ऑन रेडियो चिनार 90.4 FM, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर. और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, सर्च करें इंस्टाग्राम पर ज्यूस द बैड बॉय ऑफ रेडियो. आज के लिए इजाजत, अगली बार फिर से मुलाकात होगी. टिल वी मीट अगेन, कीप योर हेड्स हाई, वॉक टॉल एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट आई लव यू ऑल. Bye bye, Tata. Take care. Masalama.

Star Beats with Harshadeva, only on Radio Channel 90.4 FM.

जी पुकारा आपने, मैं तो आ गई रे करे, सॉरी बर्थडे और रे सारी मस्ती मजाक फन एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट से भरपूर ये सफर। शो चुनाव और बीट्स का आगाज हो चुका है, बस बोल ऑन माई वेंट्रा बीट्स ऑन रिपीट, क्योंकि बस ये है शो चुनाव।

बीट्स ऑन रिपीट, शो चुनाव रिपीट, ये सारी बातें, मस्ती मजाक फन तो है ही, लेकिन और भी बातें। देखिए सैटरडे, और सैटरडे में जोश तो काफी हाई होता है ना, एज यूजुअल, क्योंकि जोश बढ़ता है, बातें बढ़ती है, और भी बहुत कुछ बढ़ता है। यानी वो कहते हैं ना कि बिल्कुल आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब ये हाइड एंड सीक थोड़ा चल रहा है मौसम का हमारे साथ, कभी धूप तो कभी छाव, कभी बारिश, पता नहीं चलता आखिर माजरा क्या है। हमें पता है माजरा क्या है, लेकिन पता नहीं क्यों हम शायद इसको सीरियसली नहीं ले रहे। बट जब सीरियसली लेंगे तो हम समझ पाएंगे कि हमारी वजह से हमारा एनवायरनमेंट कितना डिस्टर्ब हो चुका है। अब ऐसी थॉट्स हमें सुबह सुबह आ जाती है, जो हम निकलते शो मेरा था, और ऐसे ही बहुत सारे लोग जो अपने काम में निकल गए होंगे, बहुत सारे मन में सवाल, बहुत सारे ओपिनियंस, थॉट्स जो आप मुझे बताएंगे, शो का हिस्सा बनेंगे और पहुँचाएंगे वहाँ वहाँ तक अपनी आवाज़, जहाँ जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चनार की आवाज़। सो बन जाइए शो का सुना के कोई मज़ेदार सा किस्सा, हालात, जज्बात, ख्याल, तो यही पे हम डिस्कस करते हैं। देखिए मैं तो आ चुकी हूँ आपके साथ रहने के लिए बराबर 2:30 बजे तक, और आपको बैक टू बैक सॉन्ग सुनाने के लिए। जी हाँ, फैंटास्टिक जो बन जाता है सफर जब आप बैक टू बैक सॉन्ग सुनते हैं, दैट विदाउट एनी एयर, यानी कि फ्री म्यूजिक का वादा देता है रेडियो चैनल भरपूर, और सबसे ज्यादा एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग में। दीपा सुन रहे हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर, रेडियो चैनल 90.4 FM। ये है

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जाने गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

Chinar Beats with Harshi Deva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: Chinar Beats ve Darje Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: हाय, मैं हूँ आरजे दीवा और आप सुन रहे हैं रेडियो चनार 90.4 FM।

Chinar Beats ve Darje Diva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

Jeremy. डिगडोल एंड खूनी नाला काफ़ी ज़्यादा ये रोड जो है ख़राब हो चुका है. अभी हमने थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा ट्रैफिक मूवमेंट कब बहाल हो जाए. उसका ट्रैफिक पुलिस ही हमें ग्रीन सिग्नल्स दे सकते हैं. तब तक के लिए हमें इंतज़ार करना है और हम सबसे पहले खबर आप तक पहुँचाएँगे. फिलहाल के लिए आप अवॉइड करें नेशनल हाईवे से ट्रैवल करना. बी केयरफुल, बी कॉशियस. आप अभी गाड़ी चला रहे हैं तो सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएं. अपने और अपना जो पूरा आपके माइंड में चीज़ें चल रही होती है कि आगे क्या करना है, उस चीज़ का ख्याल रखें कि आगे चीज़ें तभी होंगी जब आप सही और सेहत सलामत रहे. सो बी केयरफुल, बी कॉशियस, ख्याल रखें और सुनते रहे रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि हर दिल की धड़कन. लाल के लिए फायर ब्रिगेड तो नहीं मंगवा सकते, आपके लिए बैक टू बैक सॉन्ग सुना सकते हैं ऑन योर रेडियो चुनाव 90.4 FM, क्योंकि ये है हर दिल की धड़कन.

0: जेस्यूज।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिटार 90.4 FM हर दिल।

देखिए इश्क में ये हाल है कि बस मन करता है आपसे बहुत सारी बातें करें, और जब हम सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं, सेल्फ आइडेंटिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड व्हाट इट इज़ इन इंडिया, खासकर जब हम कहते हैं आत्मनिर्भर भारत, देखिए जहाँ पर हर कोई अपनी पहचान बना रहा है, जहाँ पर लोगों को पता है कि उनकी चॉइस क्या है, जहाँ पर लोगों को पता है कि वो अपना करियर कैसे बना सकते, वो अपने पैरों पर खड़ा होकर कहाँ पहुँच सकते हैं, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड। एंड सेल्फ आइडेंटिटी इन मॉडर्न वर्ल्ड में आपको क्या लगता है कि कैसे लोग आज भरपूर इनिशिएटिव्स का फ़ायदा उठा रहे हैं, उनको पता है कि हम कैसे आगे जा सकते हैं, उनको पता है कि उन्हें लाइफ में करना क्या, मुझे बताइए। शो कैसा बन जाए 8999904904, टेक्स्ट व्हाट्सएप करिए शो कैसा बन जाए ऑन योर रेडियो 90.4 FM।

0: खामोशियाँ, जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

बिल्कुल, मैं यही हूँ और आपके साथ बराबर होंगी 2:30 बजे तक, क्योंकि आज शो रेडियो गर्ल्स भी है, ढेर सारी बातें हो रही हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आखिर क्या है, क्या एक इंडिविजुअल की पहचान है नए भारत में, और क्या सोशल रोल्स है, लाइफ स्टाइल है, कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे लोग और कैसे मल्टीटास्किंग में अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं और सबको बताया कि कुछ ना कुछ करना है, डिपेंड नहीं रहना है किसी पे। आप मुझे बताइए कि आज हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में क्या चीज़ें आपको लगता है बदल गई है पहले से, और कैसे लोग अपनी सेल्फ आइडेंटिटी बना रहे हैं। और पहले से इंसान को पता होता है कि टेक्नोलॉजीज़ की वजह से जो चेंज आई है, और हमें पता होता है कि हमारा गोल क्या है और हमें उसके लिए क्या करना है। आप शो को ऐसा बनकर 8899904904 पर जुड़कर अपनी बात हम तक पहुँचा सकते हैं, और हम पहुँचाएँगे आपकी बात वहाँ तक जहाँ तक पहुँचती है रेडियो चुनार की आवाज़। शूटन और बीट्स, बीट्स ऑन रिपीट, ये सारी बातें। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट सेल्फ आइडेंटिटी इन द मॉडर्न वर्ल्ड। आप ही शो का हिस्सा बन जाइए और हमारे साथ शो में शामिल हो जाइए। हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ कश्मीर रेडियो 91.4 FM, ये है दिल की धड़कन।

देखिए, मेरा भी ऐसा ही कुछ हाल है अभी कि मैं तो हूँ ही यही फिलहाल के लिए और 2:30 बजे तक आपके साथ ही हो, और कहीं मैं जाऊँगी नहीं क्योंकि बस सामने थोड़ा सा इंतज़ार करना है। शो म्यूज़िक ऑन डिमांड भी अभी स्टार्ट हो चुका है, आप अपने फेवरेट ट्रैक सुन सकते हैं, और शो रेडियो गर्ल्स भी है, मैं और असरा आएंगे, ढेर सारी बातें करेंगे। फिलहाल के लिए शो चुनार 20 को टाटा बाय बाय कर देते हैं।

0: हाय मैं हूँ आरजे सू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 FM हर दिल।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: Only on Radio Chunar 90.4 FM।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

रमेश रेशमिया जी ने दिल की बात बता दी है। जी हाँ, मेरा भी दिल तड़प रहा था और कह रहा था बार बार कि जाओ बात करने जाओ, और जरूरी है कि हम आए क्योंकि अभी 2:30 बज रहे हैं और सैटरडे के दिन रेडियो गर्ल्स होता है। रेडियो गर्ल्स के बाद शो हंगामा ड्रामा, जहाँ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी। एक और चीज़ रह गई कि करंट अफेयर्स के साथ साथ फिलोसफिकल लाइफ टच ऐसा होता है जो कहीं और नहीं मिलता। और रही बात शो हंगामा की, वो शुरू हो चुका है और आप भी अपने विचार शेयर कर सकते हैं। 8899049904 इज द नंबर, यू कैन कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाट्सएप। और आते आते ही प्ले होता है कुछ खास, कुछ क्रेजी। बिल्कुल चिल करने का ही मौका है, दस्तूर है, और यही जरूरी है कि हम चिल करें। आज तो दिन ही चिल करने का है क्योंकि कल संडे है। देखिए, खुशी तो झलक रही होगी मेरी आवाज में। संडे इज द फन डे, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे ऑफ द वीक। और देखिए, सैटरडे नाइट से ही, सैटरडे इवनिंग से ही वो खुशी ना लाइक दिखने लगती है चेहरे पे, नहीं? और सबसे ज्यादा लाइक आई बिलीव गॉड्स फेवरेट लाइक आर दोज जिन्हें वीकेंड, पूरे वीकेंड छुट्टी होती है, यानी कि सैटरडे छुट्टी होती है और संडे भी छुट्टी होती है। अब भाई हम तो संडे की बात करेंगे बस। बिल्कुल, आज वीकेंड है और चिल का माहौल होना चाहिए। और आप भी बताइए कि आप अपने फन डे संडे में क्या करने जा रहे हैं। 8899904904 इज नंबर, आई रिपीट, आप अपनी बातें हम तक पहुंचाइए। मैं हूं अस्रा, शो हंगामा सुनते रहिए रेडियो सुनार में, बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: आरजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
2: वेलकम बैक टू शो हंगामा ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 एफएम।
3: और अभी वक्त है ड्रामा हंगामा पे, इसका कि क्या ट्रेंडिंग है, यानी कि कौन सी रील, कौन सी मीम लोग देख रहे हैं, रीपोस्ट कर रहे हैं, लिप सिंकिंग या डांस रील्स बन रही हैं। और देखिए, सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कुछ भी वायरल होता है, कुछ भी ट्रेंडिंग होता है। और स्पेशली जो भी जेन जीज हैं या जेन अल्फा है, जो वो पसंद करते हैं देखना। और आजकल काफ़ी वो ट्रेंड है कि चटपटे गाने सुनने हैं। और देखिए, देसी बारीज को चटपटे गाने सुने हैं, पर चटपटे गाने स्पेशली अगर देखें तो अभी नए गाने भी आ रहे हैं, पुराने गाने भी आ रहे हैं। और जिस रेट से पुराने गाने ट्रेंड कर रहे हैं, दैट्स समथिंग क्रेजी। और आज की बात करें तो आज करिश्मा कपूर और सलमान खान का जो डुओ है, उनके गाने काफी ट्रेंडिंग है और लोग काफी पसंद कर रहे हैं। हम तो ऐसी बातें कर रहे हैं जहां पे हम दुनिया को नहीं भूलेंगे बल्कि दुनिया के बारे में बात करेंगे। और देखिए, बैक टू बैक ट्रैक्स ओनली ऑन रेडियो सुना 90.4 एफएम, ये है हर दिल की धड़कन। ऑनेस्टली ये ट्रैक्स और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स हैं जो इस क्रेजी अमेजिंग डुओ ने दिए हैं, यानी कि सलमान खान एंड करिश्मा कपूर। और इस बारे में बात करें तो इट्स एक्चुअली वर्स बीइंग चटपटा बैडी सॉन्ग। एंजॉय कीजिए बैक टू बैक ट्रैक्स, क्योंकि रेडियो सुना देता है एड फ्री म्यूजिक का वादा सबसे ज्यादा। मैं मोस्ट ऑफ शो हंगामा सुन रही हूँ रेडियो सुना 90.4 एफएम। मैं बस यूं गई और यूं वापस आई।

0: आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: बजे असरा के साथ
1: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।
0: अरे वेलकम बैक जी, रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी 92.4 FM पर। अभी देखिए, अभी रेलवे अपडेट का समय है और आज की सबसे बड़ी अपडेट यही है कि यूनियन मिनिस्टर जो है, रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, उन्होंने स्टार्ट कर दी है, एक्चुअली लाइक ही फ्लैग्ड ऑफ द डायरेक्ट श्रीनगर टू जम्मू वंदे भारत ट्रेन टुडे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बड़ी और सबसे लाइक फ़ायदेमंद चीज़ हुई है रेलवे लिंक में। अभी तक तो अगर देखा जाए तो अगर हम नॉर्मल लोकल लिंक की बात करें तो बारामूला, बड़गाम, बानीहाल, संगलदन तक जाती थी, ये मेन स्टेशंस थे। इसके अलावा अगर वंदे भारत की बात करें जो रिसेंटली कुछ महीने पहले शुरू हुई थी, तो वंदे भारत पहले कटरा जाती थी, कटरा के बाद एक और ट्रेन निकलती थी जो बाद में जम्मू पहुँचती थी। बट अभी का ये है कि आज से शुरू हो गया है डायरेक्ट श्रीनगर टू जम्मू रेलवे लिंक। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको अपडेट्स चाहिए या कोई भी ऐसी चीज है जो रेलवे से रिलेटेड है, देयर इज एन ऑफिशियल ऐप नेम्ड एज रेल वन। एंड वन मोर थिंग इज अबाउट कि अगर हम NH44 की बात करें, जैसे दीवा ने आपको ये अपडेट दे दी होगी कि कैसे जो आज अगर हम NH44 की अपडेट देखें तो हर रास्ता जो हाईवे, नेशनल हाईवे है, वो बंद है एंड यू कांट ट्रेवल बिकॉज जम्मू टू श्रीनगर या श्रीनगर टू जम्मू नहीं जा सकते हैं। सो दिस इज सच अ बिग थिंग, दिस इज सच अ लाइक टर्न ओवर कि आपको एक मौका मिल रहा है, हम सबको एक लाइक दिस इज बेनिफिशियल फॉर एवरीबडी अराउंड कि कैसे हम इस रेल का इस्तेमाल करके, चाहे हमें ट्रैवल करना है एंड वी हैव टू गो फॉर वकेशंस, या वकेशंस के अलावा हमें एक बिजनेस का है, या हम माल की बात करें, जब रिसेंटली जो फ्रूट्स का जो बिजनेस थम सा गया था जस्ट बिकॉज कि नेशनल हाईवे ब्लॉक्ड था, बट उस वक्त भी यही रेलवे लिंक हमारे काम आई थी। एंड दिस इज लाइक अ ट्रिब्यूट, दिस इज अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड दिस इज सच अ नाइस थिंग एंड आई विश everybody like good and all well।

देखिए, नदियां पार करनी हो या पहाड़ पार करने हो तो अब इजी हो गया है बहुत, क्योंकि रेलवे लिंक श्रीनगर टू जम्मू डायरेक्ट इज वन ऑफ द अचीवमेंट्स दैट कश्मीरी नेशन विल रिमेम्बर. मैं हूं आस्ट्रा सुंदरी, रेडियो सुनार 90.4 FM. ये है हर दिल की धड़कन.

0: हूँ आरजे ज्यूस।
1: हेलो, मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय, मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय, मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल।

दिल को करार आ जाए जब भी आए सुहानी शाम, दबी यादें महक जाए जब भी आए सुहानी शाम। सुनिए सुहानी शाम सिर्फ और सिर्फ रेडियो चुनाव 90.4 FM।

0: मैं हूं आरजे ज्यूस। जब भी हम किसी नई जगह जाते हैं तो अक्सर उस एरिया के बारे में लोगों के जहन पे जो इम्प्रेशन सबसे पहले पड़ता है वो है वहाँ की ट्रैफिक मैनेजमेंट देखकर कि वहाँ के लोग कितने डिसिप्लिन्ड और सिविलाइज्ड हैं। हम आए दिन देखते हैं कि एक्सीडेंट्स में ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन की वजह से कितनी जानें गंवानी पड़ती हैं। ट्रैफिक पुलिस और डिपार्टमेंट्स की अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन हम पर भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ट्रैफिक रूल्स को रिलीजियसली फॉलो करें। रेडियो चुनार से हमारी यही गुजारिश है कि हम सब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि हमारा सफर खूबसूरत और सुहाना बन जाए।
1: हम है टीम रेडियो चुनार 90.4 FM एंड वी केयर फॉर यू।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आज असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

के अब दोनों बेकरार हो जाए, रोके न रुके इश्क का आबशार हो जाए, न तुम रहो न हम रहे, इस कदर आ इस जहां के पार हो जाए।

अपने दिल की बात मेरे साथ। दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: खामोशियाँ। जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था, लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे, जरूर बोलेंगे,
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
0: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर,
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: か。
1: Chinar Beats with Harshadeva, only on Radio Chinar 90.4 FM.

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला जल्दी।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ दीवाना है ये दिल की बात साहिल के साथ। ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: हंगामा ये नहीं, हंगामा होगा।
1: आएगी असरा, हंगामा होगा तब।
0: असरा आ गई तो
1: करो हंगामा आजे असरा के साथ।
0: ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: हाय मैं हूँ आरजे ज्यू।
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीबा।
2: हाय मैं हूँ आरजे असरा।
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिनार 90.4 एफएम, हर दिल की धड़कन।
1: The game is on. Tune into Radio Chinar 90.4 FM. Game on with RJ Asra. Only on Radio Chinar 90.4 FM. 4 FM.

0: हाय मैं हूँ आरजे सू.
1: हेलो मैं हूँ आरजे दीवा.
2: हाय मैं हूँ आरजे असरफ.
3: हाय मैं हूँ आरजे साहिल मुजफ्फर और आप सुन रहे हैं रेडियो चिरार 90.4 FM हर दिल की धड़कन.

0: Chinar Beats ve Darce Diva only on Radio Chinar 90.4 FM.
1: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
2: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
1: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
2: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए सुनिए रेडियो गर्ल,
1: अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
2: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
1: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चुनार 90.4 FM।

0: अरे ये सब हटा रहे सावन की घड़ा, चल अपना चला, चल अपना चला, चल ले।
1: करो अपने दिल की बात मेरे साथ, मेरे साथ है ये दिल की बात साहिल के साथ, ओनली ऑन रेडियो चैनल 90.4 FM, हर दिल की धड़कन।

0: खामोशियाँ जिनको अच्छी लगती है वो फिर बोला नहीं करते।
1: अरे वो तब था लेकिन अब सब बोलेंगे।
0: बोलेंगे जरूर बोलेंगे
1: क्योंकि आपकी आवाज को अंदाज देने के लिए
0: सुनिए रेडियो गर्ल, अ शो डेडिकेटेड टू ऑल द फीमेल्स आउट देयर
1: एवरी वेंसडे एंड सैटरडे।
0: रेडियो गर्ल्स ओनली ऑन रेडियो चनार 90.4 FM।

0: छोटा लंदन। जी हाँ, एप्पल टाउन सोपोर की मेहमान नवाजी से लेकर
1: अदब की नगरी बांडीपोरा तक,
2: वादिय लोलाब के दिलकश नजारों से लेकर
1: गुलमर्ग की खूबसूरत फिजाओं तक,
0: बारामुल्ला से बहते जहलम की रवानी से लेकर
1: जीले बुलर की दिलकश लहरों तक,
2: बस गूंजती है हवाओं में हर दिल की धड़कन।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM।
3: दिल को
4: करार आ जाए
3: जब भी आए
4: सुहानी शाम,
3: दबी यादें महक जाए
4: जब भी आए
3: सुहानी शाम,
4: सुनिए सुहानी शाम
3: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
4: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को करार आ जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
0: 90.4 FM।

0: रेडियो चनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चनार
2: 90.4
1: एफएम। रेडियो चनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

0: हमको दो, आपका है हम अपना क्या है, रहे न रहे हम बाद में इल्जाम, तुम पे नहीं आ जा बाद में इल्जाम।
1: रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

रेडियो चुनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और आज की सुहानी शाम बॉलीवुड के खान्स के नाम।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM। दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
2: 90.4
1: FM।
3: रेडियो चिनार 90.4 FM पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

रेडियो चिनार 90.4 एफएम पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम, और ये सुहानी शाम बिग बी अमिताभ बच्चन के नाम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: रेडियो चुनार की हॉटेस्ट फ्रीक्वेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: दिल को
2: करार आ जाए
1: जब भी आए
2: सुहानी शाम,
1: दबी यादें महक जाए
2: जब भी आए
1: सुहानी शाम।
2: सुनिए सुहानी शाम
1: हर रोज सिर्फ रेडियो चुनार
2: 90.4
1: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: एफएम।

0: दिल को
1: करार आ जाए,
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए,
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम,
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4 FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चैनल
1: 90.4
0: FM।

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: दबी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: FM।

तमाशा दिखाते हैं, गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं, शोर मचाते हैं, उनको तो कुछ नहीं कहते, मगर मगर

इधर चैन आराम राति सुबह दोपहर और शाम छीन ले जाते हैं और आप चुरा लेते हैं सामने लूटते हैं और आप बोल नहीं पाते हैं देखो ना दर्द हिस और जख्म दे जाते हैं तो आप कुछ नहीं कहते हैं मगर

0: दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम। दिल को
1: करार आ जाए
0: जब भी आए
1: सुहानी शाम,
0: तभी यादें महक जाए
1: जब भी आए
0: सुहानी शाम।
1: सुनिए सुहानी शाम
0: हर रोज सिर्फ रेडियो चिनार
1: 90.4
0: एफएम।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बात लेकिन एक बात

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर।
1: यहीं?
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।
1: हाँ।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा हूँ, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
2: सा सारे ग ग म प प म ग म प प म रे म ग।
3: हाँ।

0: सवरिया ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़। हो गोरी हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: तोरे नैना ओ मीठे बहना, तोरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

0: के चल दिए तन के, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं है, वल्ला जवाब तुम्हारा नहीं।
1: हम थे वो थी, वो थी हम थे,
2: हम थे वो थी और समा रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, हे याने याने याने प्यार हो गए।

हम थे वो थी और समा रंगीन समझ गए ना, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया।

का तार, धीरे धीरे मैंने खींचा, आ हा हा, घबराहट में फिर अपना अपना हाथ उसने खींचा, मैंने खींचा, आ हा हा। हम थे वो थी और समार रंगीन, समझ गए ना, जाते थे जापान, पहुंच गए चीन, समझ गए ना, याने याने याने प्यार हो गया। बाजू।

0: ना यूं ही साथी
1: है बंधी मुट्ठी लाख की
2: और रेडियो चुनाव की हॉटेस्ट एजेंसी पे आप सुन रहे हैं सुहानी शाम।
1: अरे बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे जो समझाए उसी की मची धूम आ जो समझाए उसी की मची धूम
1: hey! जो समझा उसी की मची धूम जो समझा उसी की मची धूम
0: बाजू।

इस जमाने में तेरे सिवा तू ही बता कौन था अपना। अब ना ही कोई उम्मीद, ना ही आंखों में कोई सपना।

यहीं पे तुमको जन्म मिला है, यहीं पे तुम्हारा दम निकलेगा। देख लेना एक दिन सारी दुनिया का आसमान कम निकलेगा।

इसके हर मोड़ पे एक नई कहानी, एक नया किस्सा है। पढ़ाओ दर पढ़ाओ, जिंदगी का सफर ही कुछ ऐसा है।

0: आते।
1: गुजर बसर अब दिन रात उसके दिल में मेरा है, खबर ये भी ना रहा क्या उसका क्या मेरा है। करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, करवटें लूं तो आहिस्ता ही पलटता हूँ, क्योंकि खुशी हो या दर्द अब ये सब कुछ मेरा है।